0: action. Welcome.
1: पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं.
2: AJ.
3: AJ.
2: AJ. AJ.

लाइफ कॉल तरफ ध्यान रखिएगा। 09238200495 गुरु जी मुंग सर लाइफ कॉल बने सुख राजी और चरथना।

सुबह संग बेटा सूर्य झुरूज के समा बात सोरी मेरे हखने के समा बात सोरी महरूबा दागी ख्वाइन दे यानी यानी समाची सुमर सोल्जर यानी पापर दिल के समा बात सोरी तासु चोलो ता हर कले वाम जे राजई लाइफ कॉल 0300191981 0300 समा द स्टूडियो नंबर से कम जगह सदा से दे किचर ता सु समा सर ला लाइफ कॉल बने खबरी कवल वाली नु समा द स्टूडियो नंबर से कम जगह सदा से दे खुदल के बैकग्राउंड की हुई थी पसरू जामो के सूग द सुर मोटर अरमान के अगवी सिन मोटर पशुगो की पंचर दे उमंग तनावे राखे माजी कर दसवी बैकग्राउंड के दगा

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

0: होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजुनना ना उम्मीद शिवी बीमारान द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्रानी सशविदा कतासु के हम सुख पली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्मोल ग्वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब हो गई पता याद साथी प मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल प देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस प दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313949491 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा सा सुखार प सवाबई के हम
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो और अब वही यकीन वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद जो अपने तजर्बे इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज एक खिदमत और एक मिशन समझती है चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द दमा एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो खवातीन के अमराज या आसाबी थकन हर बीमारी का कुदरती महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में यहाँ ना खतरनाक दवाएं ना साइड इफेक्ट बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 03313949441 आपकी सेहत हमारा अज़्म आपका एतमाद हमारी पहचान हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी कुदरती शिफा दिल से दुआ कुदरती शिफा दिल से दुआ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी
0: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हु कुचरता ददग ज्वानको पवख बाने गम उनकलेशी नु प रारवान वख की दग ज्वान के स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सो रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयल स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा तुम चिप सलूर रजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और ये वाज दाना द दग दानो चकम दागो न दी अगर हम प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई प दे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ सलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दाने और दानो दाहुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: back. Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
2: सवाबी। माँ वेले माले दशारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू दपारा
2: शाह पमीना बाजार टोपई की दशारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और दशारजा टोले वेरायटी मौजूद दा
3: नुद्दा सिवाया का न
2: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स, फोन 0938273232।
4: चा हडू की माछीवी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिद चा दखपो औ द लसुनु गुतु रगुन बन शिवी दी औ या गुते बेहरकत शिवी औ द चाचे दखपो द काड़ा खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवी हगटोली जनाना चिद चा

यो मैसेज ओके जी आवाज बहाल इस रमा था कॉन्टेक्ट हो गई आवाज बहाल इस रमा था यो मैसेज ओके शिजमा आवाज ओक देख बराबर न देख बराबर इन खबर अदा औ बराबर नहीं नो जब जो कोशिश को मफल से अच्छी बराबर कमाम 0377-00666 पदी नंबर तास कांटेक्ट कॉलेज से कॉल्स कॉलेज ना कॉल ना शिका कॉलेज कल कॉलेज कमन तास ता इजाजत निश्ते सिर्फ जस्ट कमन मैसेज बखो इसे देखा ना मैसेज दलारे तास बराजी मैसेज दलारे कमन तास बफल दम बराखो यो 0307-00666 खा जनाब द ट्रैक जो चेंज कम और यो उर्दू ट्रैक प्रोग्राम के शामिल हो द ट्रैक जमा फेवरेट दे और मोस्ट फेवरेट दे आई होप द सस बम फेवरेट ही और द चाचा द ट्रैक कमन फेवरेट दे नागी दे यो मैसेज मातू की मैसेज कमन दी एहसास रा कीजिए

0: अच्छा जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा आप कि मेगामात मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मैं ये बात कर रहा था लिसन्स के, रात का ये सुकून, धीमी मौसीकी और आप सब की रफाकत एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रही है लिसन्स।
1: ये मुमकिन तो नहीं,
0: शायद इस वक्त कोई अपने माजी को याद कर रहा होगा, कोई किसी के पैगाम का इंतजार कर रहा होगा, कोई खामोशी से आसमान की तरफ देखकर किसी अपने के लिए दुआ मांग रहा होगा, और शायद कोई ये भी सोच रहा होगा कि अगर किस्मत एक बार फिर मौका दे देती तो वो कुछ बातें कभी अधूरी ना छोड़ता। मैं लिसन्स यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत इज्जत के साथ किसी को आजाद कर देने का नाम भी है।
1: ये दिल जो
0: और अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी में ना रह सके तब भी उसके लिए दुआ जरूर मांगिएगा। खैर की दुआ बाकी रहनी चाहिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत नफरत में नहीं बदलती, वो वक्त के साथ खामोश जरूर हो जाती है मगर बद्दुआ कभी नहीं करती। अच्छा जी, कुछ पैगामात हैं इनमें प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। कौन कौन हमारे साथ दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमारे साथ दिए जा रहे हैं जी। 0307 27 00 666, 0307 27 00 666। अहमद अली हमारे साथ दे रहे हैं जी, मामू बांडा से। अच्छा, ये मामू बांडा है या मामून बांडा है? बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ दिया मामू बांडा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, खैर खैरियत आप अपनी सुनाएं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत, हालात, मिजाज, जिंदगी अच्छे से चल रही है? चलें, अच्छी बात है अगर आपकी जिंदगी अच्छे से चल रही है। सलाम माय स्वीट भैया सिंह, ठीक ठाक किए

બસ આવી વાલી જ ગમદાન માત મેસેજ કહી હોય છે શો લાઈવ દેખાના હાય સભા સ્વાભી વાલે સભા મેં આપકો ક્યા બોલું મેને કભી ભી અપના રૂટીન પ્રોગ્રામ રિકોર્ડેડ નહીં પ્લે કિયા ઓર યે પ્રોગ્રામ લાઈવ પ્રોગ્રામ હૈ અગર આપકો બાવર નહીં હો રહા યે તો ફિર બહોત બડા જુલ્મ હૈ કે આપકો ઇસ આવાઝ પે બાવર નહીં હો રહા ઇસ આવાઝ પે યકીન નહીં હો રહા સલામ ભાઈ વાલેકુમ અસલામ સિંઘ ટિક ટાક કી ખેર ખરીયત દે જી અલહમદુલ્લાહ ટિક ટાક ખેર ખરીયત રેડિયો મે ઉસ ઓન કો ચરતા તલે આસમા ફ્રોમ સોબે આસમા જગમદન ઉસ લકજ ગમદન ખૂબ ઉપાસિદા સ્તબ લીદો રના ફલનામા હમ હિરશી એ ગનમ રંગા લચિલંગા તાકે સગમાલ સલામુના સગુન ભાઈ સિંઘ ખી ટિક ટાક કી કુલાજ ગમદન મુસર પ્રોગ્રામ કે શામિલ છો જે કુલા ઉઈ ઉઈ ઉઈ તોબા લાડમ જી ડૂબ શમા શુક્રિયા કુલાજ દા સુરાલી શામિલ છો ઓ અખલ મોજૂદ ગયા અહેસાસ મરોગ રતા સો અચ્છા જી નેક્સ્ટ કિસ કો મેસેજ આયા હેલો ભૈયા સિંગે ખી ટિક ટાક કે ખેર ખરીયત તે આવ જી ખેરિયત દેજે પ્રોગ્રામ જબરદસ્ત રવાન દે અમાયા દ બુનેર ના બુનેર તો તાલે નચ કમ ને મુસર પ્રોગ્રામ કે શામિલ છે દ અમાયા બોલો ઓર દુમ કો તાજ માસ સાઈડ સલામ ને જી વાલેકુમ અસલામ સલામ ના ઓ ખવાગા અમના ખવાગા અમના અમના મત કમ ને નન સબા પી કે શિવ દે જી આવ ગના મોસમ દાસ દે કા હાય ભૈયા મી આયશા ફ્રોમ ઇસ્લામાબાદ આયશા હમારા સાથ દે રહી ઇસ્લામાબાદ સે બહોત બહોત શુક્રિયા આયશા થેન્ક યુ સો મચ લોંગ ટાઈમ નો સી 03072700666 લૈલા તાહિર હમારા સાથ દે રહી હૈ બહોત બહોત શુક્રિયા લૈલા તાહિર આપને હમારા સાથ દિયા એન્ડ હાય ગુડ મોર્નિંગ ના બલ્કિ ગુડ નાઇટ સાદ હમારા સાથ દે રહી હૈ બહોત બહોત શુક્રિયા સાદ આપને કહાં સે મેસેજ કિયા ભાઈ સાથ ફ્રોમ ગડેયાલા યે કોન સે ડિસ્ટ્રિક્ટ મે આતે હૈ મતલબ ડિસ્ટ્રિક્ટ સોબી મે ડિસ્ટ્રિક્ટ હરિપુર મે ડિસ્ટ્રિક્ટ અટક મે ડિસ્ટ્રિક્ટ મરદાન મે ડિસ્ટ્રિક્ટ ચારસદા મે અચ્છા પિછલે પ્રોગ્રામ મે ભી શગુફતા બહોત જ્યાદા ગિલ્લે કર રહી થી જો કે હમારી મતલબ ચારસદા સે રેગ્યુલર સુનને વાલી હૈ તો જો લોગ ગિલ્લે કરતે હૈ ઓર ગિલ્લે અપને સે હી હોતે હૈ મતલબ બેગાને લોગો સે પરાયે લોગો સે જો દિલ કે મતલબ બહુ જ્યાદા દૂર હો ઉન લોગો સે તો ગિલ્લે નહીં હોતે ના જો દિલ મે હો યા દિલ કે સાથ હો દિલ કે સાથ ચિપકે હો તો એસે લોગો સે ગિલ્લે ભી બંદા કરતા હૈ અચ્છા શગુફતા યે ગિલ્લા કર રહી થી ભાઈ કે આપકી FM 94 દિલબર સોબી કી આવાજ નહીં આતી તો આપ લોગો કે લિયે ખુશખબરી એક મેં લેકે આને વાલા હું જી ઓર મતલબ છે ના ચલે યે બાત છે ના ફિર કભી જો હે ના આપકો બતા દુંગા ઠીક હૈ ના અગર બહુ જ્યાદા સબર નહીં હો રહા તો ચલે મેં બતા દેતા હું બહુ જલ્દ મેં એબટાબાદ કે સ્ટેશન સે જો હે ના પ્રોગ્રામ આપ લોગો કે લિયે સ્ટાર્ટ કરને લગા હું ઠીક હૈ ના 3 બજે સે સો વહાં સે આપ મુજે સુન લિયા કરેંગે ઠીક હોગે જી અબ યે કોન હમારા સાથ દે રહે હૈ અસલામ અલૈકુમ વાલેકુમ અસલામ તાહિર ભાઈ અતાઉ સિંગે ખી ટિક ટાક કી ખેર ખરીયત દે જી અલહમદુલ્લાહ શો ઇઝ વેરી નાઇસ ગુલનૂર જી ગમદન મુંગ સરફ પ્રોગ્રામ કે શામિલ શો ગુલનૂર તો આ ગુલનૂર ખુને જે બિલાલ જ લકજ ગમદન પકવાલ અગસ્તે ઓમો આઓ આ મુકાબલા ઓ મુકાબલા કે ગમદનો તા પાર્ટિસિપેશન કર્યો નુસ્તાનુ માનો અગસ્તે દ સલમાન ગમદન માનુ અગસ્તે હો તો અગ ગુલનૂરે અગે નો ડેર ઝેર ગમદન તાના માફી ગોળમો અદરવાઇઝ તાના બેચ ગમદન ટાફી ગોળમ કના માફ કીએ નો મામુ બેવફા ખલકુ મુબારક જ ગમદન યો સો ખબરિયો કે સમ ખપે મો બેવફા ખલકુ મુબારક જ ગમદન સો સો ખબરિયો કમ માસર હમ ગમદન સંભલ્લા ખલકુ બેવફાઈ ખડે દા પદી ખલ કુછ ગમદન ખબર પકાર દીજી ઓ સખત સખત ખબર પકાર દે તસો જી ભૈયા દિસ સોંગ માય ફેવરેટ સોંગ એન્ડ સાઉન્ડ ઇઝ ઓકે પ્યારી તાહિર મુસર પ્રોગ્રામ શામિલ છો જી મનાના શુક્રિયા પ્યારી તાહિર બહોત બહોત શુક્રિયા થેન્ક યુ કે આપને હમારા સાથ દિયા સલામ ભાઈ વાલેકુમ સલામ તા સિંગી ખી ટિક ટાક કી ઓલેના કોઈ પ્રોગ્રામ ના ઓલેજ કમદન 94 ના ગાયબ ગાયબ યે પ્રોગ્રામ ના બસ હુકમ ઉસ જ તા સચ કમદન ઓ સુગે મા યાર બંદે કો ઇતના મશહૂર ભી નહીં હોના ચાહીએ યા ઇતના મતલબ છે ના વૈસે બહોત સારે દોસ્તો કી મોહબ્બતે હૈ અબ મેં આપકો ક્યા બતાઉં ગુજર ખાન પંજાબ મે જો હે ના એક સ્ટેશન હૈ વહાં સે મુજે ઓફર આઈ હૈ લાઈક જો હે ના હમારે સ્ટેશન પે પ્રોગ્રામ કરેં ઇસકે અલાવા એક રેડિયો હૈ ભાઈ શેખપુરા મે બહાવ સે ભી મતલબ
राजस्थान में है, मुल्तान से भी दिन पूरे नेटवर्क पे मतलब ये प्रोग्राम मेरा, तो मुझे कह रहे हैं भाई ताहिर आपका एक दिन हम स्केड्यूल में नाम रखते हैं और आपने इस तरह करना है कि ये प्रोग्राम स्टेशन पे जरूर करना है, इन स्टेशन पे मतलब कुछ पांच स्टेशन हैं, पांच स्टेशन पे एक ही टाइम पे मतलब शो लिंक होगा, अब ये सोच लें। तो इसके अलावा मैं अपने शोज के हवाले से अगर आपको बताऊं तो डेरा इस्माइल खान में, डी आई खान में, डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे भी मेरा प्रोग्राम होता है, मंगल को मेरा प्रोग्राम होता है जी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसके अलावा हरिपुर के स्टेशन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो हरिपुर का भी स्टेशन है, वहां पे भी मेरा प्रोग्राम होता है जुमेरात को, ठीक है, वो भी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। अब 94 के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 94 पे आप लोगों के साथ इसी दिन मतलब मेरी मुलाकात होती है, और बाकी डे टाइम में भी कभी कोई स्लॉट खाली हो तो वहां पे भी प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। अब एक बंदे के पास इतने प्रोग्राम्स हों या इतना मतलब है ना इतनी टफ लाइफ और इतनी बिजी लाइफ, और अब तो खैर जो है ना हैदराबाद के हवाले से मैंने आपको बताया वो प्रोग्राम भी आने वाला है, तो भाई मसरूफियात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेरा आना जो है ना यहाँ पे अब 94 पे क्या समझते हैं, मैं कम आना जाना रखूं या फिर उसी तरह मुसलसल जो है ना मेरा आना जाना यहाँ पे लगा रहे, तो ये मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा डे टू डे मतलब जो है ना मैं टाइम टू टाइम कोशिश करूंगा कि एफएम 94 के सवाबी सुनने वालों को भी मतलब सवाबी के जितने भी सुनने वाले हैं या सवाबी के आसपास के सुनने वाले इनको भी टाइम दूं, लेकिन क्या किया जाए जी, मसरूफ लाइफ है, बिजी लाइफ है, स्केड्यूल बड़ा टफ चल रहा है। तो अब आपको तो पूरा स्केड्यूल मैंने बता दिया भाई कि इस स्टेशन पे होता है और इन इन स्टेशन पे प्रोग्राम्स होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ स्टेशन जो है ना बीच में मैं स्किप कर लूँ, और कौन से अब पता नहीं जो है ना ये माड़ी किस्मत या मतलब किसका नसीब जो है ना वो होने वाला है, कौन से स्टेशन से मैं मतलब जो है ना आउट होने वाला हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन ये मैसेज किसका है, रानी हमारे साथ दे रही है। रानी शुक्र दे प्रोग्राम दोपहरा लेज कम प्रोग्राम के शामिल की वोले प्रोग्राम दोपहरा कम लम्हा जवाब दर कर जी आओगे उर्दू बने पोएगी या उर्दू आपको समझ आती है तो यकीनन जो है ना आप समझ चुकी होंगी, अदरवाइज अब मेरे दिल के इतना जोर नहीं मैं आपको एक एक लफ्ज एक एक बात समझाऊं। सलाम बेस्ट मामू जान सिंह यखी टिकटा की आइजनोर सिंह अदा आइजनोर खदर जी प्रोग्राम मौसम जबरदस्त है हिफ्ज़ा मुक्सर पंचपीर ना प्रोग्राम के शामिल शुआ मनाना शुक्रिया पंचपीर ना रात लपारा हिफ्ज़ा नाय इलावा नेक्स्ट हाय जी ज एस खानी फ्रॉम टोपी कायनात ता डेर जी अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम कायनात बउदी कायनात बल्ल किच गमदन यो खिलो खूब बम खिड़ी हो तो एच गमदन कायनात ता सलाम ना कायनात का जमा आवाज और कायनात यो एच गमदन मैसेज होगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मामू सिंह ये ठीक ठाक ये खैर खरीत है तास प्रोग्राम सिर्फ नन वी औक नोर कल हम तास गमदन नो प्रोग्राम को ज तास गमदन नो खामोशा खा खामोश गमदन औरीदुन को की शुक्रिया जी मनना जे तसो खामोश तैसम आवाज और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं सादिया हूँ शो बहुत ही अच्छा है और बदला वफा का देंगे बड़ी सादगी से हम तुम हमसे रूठ जाओगे और जिंदगी से हम हाय सादिया सादिया ये गड़ी हबीबुल्ला से हमारा साथ दे रही है जी मानसेरा से मैसेज किए है इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया मानसेरा से मैसेज करने के लिए भाईजान इंसान के इखलाक से मोहब्बत करनी चाहिए भाई जान इंसान के इखलाक से मोहब्बत की जा सकती है कि नहीं इस बारे में जो है ना कुछ थोड़ी सी बात की जाए इंसान के इखलाक से मोहब्बत की जा सकती है क्यों नहीं की जा सकती। राबेल हमारे साथ दे रही है टोपी से बहुत बहुत शुक्रिया राबेल आपने हमारे साथ दिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भैया प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है ये गाना जब ड्रामिक है और ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ताहिरा को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम कहिएगा ताहिरा भी सो रही होगी जी ताहिरा इतनी मतलब जो है ना वेली नहीं है कि इतनी मतलब उजगार नहीं है कि अभी तक ताहिरा प्रोग्राम के इंतजार में बैठी हो और प्रोग्राम सुने वो सो चुकी होगी ठीक है ना। ये महम ने हमारे साथ दिया है मला से बहुत बहुत शुक्रिया मला अटक से आपने हमारे साथ दिया है सलाम जी वालेकुम असलम ताहिर भैया सिंह यही टिकटा की आवाज ओके दे प्रोग्राम डेर मजेदार दे जी ज अजीज खान द टनकोई ने जी टनकोई से हमारे साथ दे रहे हैं अजीज खान बहुत बहुत शुक्रिया टनकोई से मैसेज किया जी आपने। इसके अलावा
नेक्स्ट हमारे साथ कौन दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो? ईशो हमारे साथ दे रहे हैं जी। ईशो, मैं ईशो हूँ सवाबी से। रुखेन बहुत ही अच्छा है। आयजा कैसी है? आयजा अच्छी है जी। और आयजा आजकल बहुत ज्यादा इतने कोई नखरे कर रही है ना कि आयजा के नखरों के हवाले से, चले मैं यहाँ पे नहीं बताता, आप लोगों की नजरें फिर जाना खा जाती हैं। अभी भी बीमार है और कल मैं डॉक्टर के पास उसे लेके गया और बहुत ज्यादा मतलब जो है ना आजकल का मौसम भी इस तरह का चेंज होने को है और आयजा की तबीयत कुछ थोड़ी सी नासाज है। बरगैर आजकल बहुत ज्यादा नखरे कर रही है और लोगों की नजरों ने भी खा लिया ना, मतलब ये कि लोगों की नजरें जो है ना, हाय क्या काफिर जो है ना नजरें हैं भाई। जिस अंदाज से, जिस मतलब स्टाइल से ये चलती है या फिर मतलब आंखों की चमकाहट और आंखों का मतलब जो है ना आंखों की स्टाइल, और मैं आपको बता नहीं सकता। अक्सर आयजा की मामा जो है ना मुझे एक बात कहती हैं कि हो ना हो बच्ची जो है ना आप पे गई है, हो ना हो बच्ची ने मतलब जो है ना आप की सारी आदत जो है ना अडॉप्ट कर ली है और आपकी सारी जो है ना मतलब वो कॉपी है। कॉपी ऐसे है, हंसना भी, आंखों में बातें भी करना और ये कि साथ साथ जो है ना कदम भी बड़े स्टाइल से घूमना फिरना भी और ये मस्तियां वगैरह भी करना, शरारतें भी करना, ये सारा कुछ जो है ना टोटल सेम टू सेम जो है ना बचपन में आपके पास भी था और आपके अंदर भी मतलब जो है ना ये गट्स थे और इस बच्ची के अंदर भी जो है ना ये गट्स आ चुके हैं। तो ये मामला थे जी आयजा के। बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ दिया। नेक्स्ट हमारे साथ कौन दे रहे हैं, कहाँ से जी? आयजा मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पसंद है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्ची है और मैं इसकी टिकटॉक देखती रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, टिकटॉक देखती है आप। सलाम सिंगी टिकटॉक की हयानूरियम, आई मिस यू। शुक्रिया जी मनाना।

वेल लिसनर्स, एक मर्तबा फिर मैं ताहिर जमान आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। एंड मैं आज कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा और किस हवाले से मैं बात करूंगा जी। वेल लिसनर्स, बातें तो मेरे पास काफी सारी हैं और ये बात मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये बात मैं करना चाहता हूँ लिसनर्स की, मेरे दोस्तों, बेवफाई का दुख शायद जो है ना इतना गहरा नहीं होता जितना बेपरवाही का होता है। मेरे स्वीट दोस्तों, मेरे स्वीट लिसनर्स, बेवफाई का दुख इतना गहरा नहीं होता जितना बेपरवाही का होता है, क्योंकि बेवफाई अक्सर एक ही लम्हे में सामने आ जाती है, लेकिन बेपरवाही इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से तोड़ती रहती है। पहले बातें कम होती हैं, फिर मुलाकातें कम हो जाती हैं, फिर मुस्कुराहटें बदल जाती हैं, फिर इंतजार बढ़ जाता है और एक दिन इंसान को महसूस होता है कि जिस दिल में कभी उसका नाम धड़कता था, अब उसकी याद भी मेहमान बनकर रह गई है। मोहब्बत में सबसे ज्यादा तकलीफ तब नहीं होती जब कोई अलविदा कह दे। कहना चाहूंगा कि मोहब्बत में सबसे ज्यादा तकलीफ तब नहीं होती जब कोई अलविदा कह दे, बल्कि तब होती है जब कोई अलविदा भी ना कहे और फिर भी आपकी जिंदगी से खामोशी के साथ निकल जाए। ना कोई वजह, ना कोई वजाहत, ना कोई शिकायत, बस एक खामोशी, और वो खामोशी इंसान के दिल में हजारों सवाल छोड़ जाती है। इंसान हर रात यही सोचता है कि आखिर मेरी कमी क्या थी, मेरी मोहब्बत कम थी या मेरी किस्मत। बाज़ुकात बेपरवाही इंसान को ऐसे मकाम पर ला खड़ा करती है जहां वो दूसरों से नहीं अपने आप से सवाल करते, अपने खुद से सवाल करता है। वो आईने में खुद को देखकर पूछता है कि क्या मैं वाकई इतना गैर जरूरी था, क्या मेरी मौजूदगी इतनी मामूली थी कि मेरी गैर मौजूदगी किसी को महसूस ही नहीं हुई। मेरी गैर मौजूदगी किसी को महसूस ही ना हुई। और यकीन मानिए, ये सवाल आंखों में आंसू नहीं बल्कि दिल में खामोश जख्म छोड़ देता है। लेकिन मेरे प्यारे सामीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, उसके पीछे अपनी इज्जत नफ्स को कभी मत भूलिए। मोहब्बत खूबसूरत होती है, मगर मोहब्बत अगर खुददारी छीन ले, सुकून छीन ले, मुस्कुराहट छीन ले, तो फिर इंसान को रुक कर सोचना चाहिए कि सच्ची मोहब्बत में इंतजार तो होता है मगर तजलील नहीं, खामोशी तो होती है मगर बेहिसी नहीं, फासले तो होते हैं मगर दिलों के दरवाजे बंद नहीं होते। और कभी कभी अल्लाह ताला किसी शख्स को हमारी जिंदगी से इसलिए दूर कर देते हैं ना, ताकि हम ये समझ सकें कि जिस रिश्ते को हम अपनी पूरी दुनिया समझ बैठे थे, दरअसल हमारी पूरी दुनिया था ही नहीं। अल्लाह जब एक दरवाजा बंद करता है तो इसके पीछे कोई हिकमत जरूर होती है, अगरचे वो हिकमत हमें बहुत देर बाद समझ आती है। मैं लिसंस यहां ये बात भी कहना चाहता हूं कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि

मैं लिसनर्स यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि मैं कहना चाहता हूँ लिसनर्स के बेवफाई से भी ज्यादा दर्दनाक चीज अगर कोई है तो वो बेपरवाही है, क्योंकि बेवफाई कभी ना कभी सामने आ जाती है, मगर बेपरवाही इंसान को रोज थोड़ा थोड़ा मारती रहती है। पहले बातें कम होती हैं, फिर वक्त कम हो जाता है, फिर मुस्कुराहटें बदल जाती हैं, फिर जवाब आना बंद हो जाता है, और आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि इंसान अपने ही वजूद पर सवाल करने लगता है, अपने ही वजूद पर सवाल करने लगता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। सोचिए लिसनर्स, आप मोबाइल हाथ में लिए बैठे हों, बार बार स्क्रीन रोशन करते हैं, शायद कोई पैगाम आया हो, शायद कोई कॉल आई हो, शायद सामने वाले ने जवाब दिया हो, लेकिन हर बार स्क्रीन खामोश रहती है। फिर दिल खुद को तसल्ली देता है कि शायद मसरूफ होगा, शायद बाद में बात कर लेगा, शायद एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता और फिर महीनों में बदल जाता है, और फिर एक दिन हिम्मत करके आप कॉल करते हैं, मगर कॉल नहीं लगती। दोबारा कोशिश करते हैं, फिर भी कॉल नहीं लगती। दिल कहता है शायद नेटवर्क का मसला होगा, मगर जब हकीकत सामने आती है कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है लिसनर्स, तो यकीन माने कि उस लम्हे सिर्फ नंबर ब्लॉक नहीं होता, इंसान को यूं महसूस होता है जैसे उसके तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। जिसे उसकी बात करने का हक भी, जिससे उसकी उसकी बात करने का हक भी छीन लिया गया, और जैसे उसकी मौजूदगी ही गैर जरूरी करार दे दी गई हो। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी यही नंबर रात भर मसरूफ रहता था, घंटों बातें होती थी, एक दूसरे की हंसी भी कीमती लगती थी, खामोशी भी खूबसूरत लगती थी, और आज वही नंबर कॉल भी कबूल नहीं करता। इंसान मोबाइल बंद नहीं करता, दिल बंद हो जाता है, आंखें स्क्रीन पर रहती हैं, देखती रहती हैं, मगर असल इंतजार दिल करता है। बाज़ुकात इंसान किसी से लड़ाई भी नहीं चाहता, सिर्फ एक वजह जानना चाहता है, सिर्फ इतना सुनना चाहता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही, क्योंकि कभी कभी एक तल्ख सच भी इस खामोशी से बेहतर होता है, ऐसी उस खामोशी से बेहतर होता है लिसनर्स के, जो इंसान को हर रात सैकड़ों सवालात के साथ सुला देती है। मेरे दोस्तों, बेपरवाही की अजियत यह नहीं है कि सामने वाला बात नहीं करता, असल अजियत यह है कि आपके पास कहने को हजारों बातें होती हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। आपके दिल में मोहब्बत बाकी होती है, मगर सामने वाले के दिल में फुर्सत बाकी नहीं रहती। आप अब भी उसका नाम देखकर मुस्कुरा देते हैं, मगर शायद वो आपका नाम देखकर नजरें फेर लेता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है लिसनर्स, जब इंसान अपने आंसू भी किसी को नहीं दिखा सकता। वो हंसता भी है, लोगों से भी मिलता है, काम भी करता है, मगर अंदर ही अंदर एक खामोश जंग लड़ा होता है। कोई पूछे तो सिर्फ इतना कहता है कि मैं ठीक हूं, हालांकि हकीकत यह नहीं होती लिसनर्स, वो सिर्फ सांस ले रहा होता है, जीना तो शायद बहुत पहले छोड़ चुका होता है। इसलिए लिसनर्स, मैं कहना चाहूंगा कि इंसान
इंसान के अंदर की झंड के हॉल से मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि

मैं लिसनर्स यहाँ ये कहना चाहूंगा कि बाज़ जंगें ऐसी होती हैं जिनकी कोई आवाज नहीं होती है, कोई धुआं नहीं उठता, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होते, मगर फिर भी वो इंसान को अंदर अंदर से धक्का देते हैं। वो इंसान को अंदर से धक्का देती है। ये जंग दिल और दिमाग के दरमियान चलती है। एक तरफ दिल कहता है कि अभी इंतजार कर लो, शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और दूसरी तरफ दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ये समझाता है जिस रास्ते पर सुकून न मिले वहां ज्यादा देर नहीं ठहरा जाता। इंसान इन्हीं दो आवाजों के दरमियान खामोशी से टूटता है। कभी इंसान खुद से लड़ रहा होता है, वो खुद को मजबूत दिखाई देने की मतलब जो है ना एक अदाकारी करता है, मगर अंदर कहीं एक बच्चा बैठा होता है जो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे समझ ले, कोई उसकी खामोशी को पढ़ ले, कोई बगैर पूछे ये कह दे मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो इंसान लोगों के दरमियान रहते हुए भी तनहा हो जाता है। मैं स्वीट लिसनर्स यहां ये बात करना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात रातें सबसे ज्यादा गवाह बनती हैं। पूरा दिन इंसान खुद को मसरूफ रखता है, लोगों से मिलता है, हंसता है, बातें करता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है और खामोशी कमरे में आती है, दिल के सारे सवाल एक एक करके जाग जाते हैं। फिर इंसान अपनी यादों के सामने बैठ जाता है और अपनी ही सोचों से बातें करने लगते हैं, और वो जंग दोबारा शुरू हो जाती है जिसका किसी को दिखाई भी नहीं देता। सबसे मुश्किल जंग के हवाले से मैं अगर बात करूं तो सबसे मुश्किल जंग वो नहीं होती जब इंसान किसी को भूलना चाहता है, ये जब इंसान किसी को भूलना चाहता हो। और ये भी याद रखना चाहिए, ये भी स्वीट लिसनर्स याद रखना चाहिए कि वो आगे भी बढ़ना चाहता है मगर दिल बार बार माजी की तरफ पलट जाता है। वो खुद को भी समझाना चाहता है अब सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी याद, एक पुराना लम्हा, कोई मानूस एहसास फिर से दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। यही वो जंग होती है जो इंसान को खामोश कर देती है। मेरे दोस्तों, हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता। बाज़ लोग इसलिए खामोश होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लड़ चुके होते हैं, दुनिया से नहीं अपने जज्बात से लड़ रहे होते हैं। वो आंसुओं को शिकस्त नहीं देते लिसंस, वो आंसुओं को शिकस्त नहीं देते। इसलिए नहीं कि वो अपने आंसुओं को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं, यहां ये बात भी कहना चाहूंगा कि आंसुओं के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं यहां पे कि कहते हैं ना, कहा जाता है ना कि कुछ लोग अपने आंसुओं को शिकस्त नहीं बनने देते, उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। वो दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं हालांकि उनके दिल के अंदर दर्द का एक समंदर होता है। उनके दिल के अंदर दर्द का एक समंदर खामोश से मौजे मार रहा होता है, हर किसी को अपनी तकलीफ नहीं सुनाते क्योंकि वो जानते हैं कि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। इसलिए वो अपने दुख को अपने रब के सुपुर्द कर देते हैं और अपने चेहरे पर सब्र की एक खूबसूरत मुस्कुराहट सजा लेते हैं।
بعض اوقات انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ رونا بھی چھوڑ دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو ضرور آتے ہیں مگر وہ بہتے نہیں ہیں، دل میں چیخیں بھی ضرور ہوتی ہیں مگر ہونٹ خاموش رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی لسنس، حالانکہ سویٹ لسنس حقیقت یہ نہیں ہوتی، وہ ہر احساس کو اپنے سینے میں دفن کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے، یہ خاموش مگر ہونٹ خاموش رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی لسنس، حالانکہ سویٹ لسنس حقیقت یہ نہیں ہوتی، وہ ہر احساس کو اپنے سینے

मैं जिंदगी के हवाले से यहाँ ये बात करना चाहूंगा लिसनर्स के, ये ट्रैक भी आप लोगों के लिए एंटरटेन करता हूँ साथ साथ, और कुछ जिंदगी के हवाले से बात करते हैं, लाइफ के हवाले से।

दिस इज बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि मेरे प्यारे सामीन, दुनिया वाकई बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत भी है, मगर कभी कभी यही दुनिया बहुत बेरहम भी महसूस होती है। यहाँ लोग अक्सर इंसान की मुस्कुराहट देख लेते हैं मगर उसके दिल के जख्म नहीं देखते। लोग चेहरे पढ़ लेते हैं मगर एहसास नहीं पढ़ पाते। किसी के

कभी कभी दिल सोचता है कि अगर जिंदगी इतनी आसान होती जितनी लोगों को नजर आती है तो शायद इतनी दुआएं ना मांगनी पड़ती हैं, इतनी रातें जाकर ना गुजारनी पड़ती हैं और इतनी बार खुद को संभालना ना पड़ता। कभी कभी दिल सोचता है कि अगर जिंदगी इतनी आसान होती जितनी लोगों को नजर आती है तो शायद इतनी दुआएं न मांगनी पड़ती, इतनी रातें जागकर न गुजारनी पड़ती और इतनी बार खुद को संभालना न पड़ता। मगर फिर इंसान अपने रब की तरफ देखता है और खुद से कहता है कि शायद यही आजमाइश मुझे मजबूत बनाने के लिए है, शायद यही दर्द मुझे दूसरों का दर्द समझाना सिखा रहा है, शायद यही तन्हाई मुझे अल्लाह के करीब ले जा रही है। और मेरे दोस्तों, जो लोग बचपन से मेहरूमियों के साथ जीते हैं ना, वो अक्सर छोटी छोटी खुशियों की भी बहुत ज्यादा कदर करते हैं। एक मोहब्बत भरा जुमला, एक मुखलिस दुआ, किसी के खलूस या किसी का खलूस से हाल पूछ लेना, उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से ज्यादा कीमती होता है। क्योंकि जिसने कमी देखी हो ना, वो नेमत की कीमत सबसे ज्यादा जानता है। जिंदगी से शिकायतें तो बहुत होती हैं, कभी किस्मत से, कभी वक्त से, कभी हालात से, मगर फिर भी इंसान जीता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि अगर रात लंबी है तो सुबह जरूर आएगी, अगर रास्ता मुश्किल है तो मंजिल भी कहीं ना कहीं वजूद में आ जाएगी, अगर आंखें आज नम है तो अल्लाह ताला एक दिन इनमें खुशी के आंसू भी जरूर लेके आएगा। मैं लेसन्स कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ इस मौजू पे मजीद।

स्वीट लिसनर्स, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि कभी कभी हम जिंदगी में कुछ ऐसे चेहरों से गुजरते हैं जो बज़ाहिर बहुत मजबूत, बहुत पुरएतमाद और बहुत खुश नजर आते हैं, बहुत पुरएतमाद, बहुत खुश नजर आते हैं, मगर उनके दिल की किताब खोली जाए तो उसके हर सफ़े पर सब्र, जद्दोजहद, खामोश आंसू या खामोश आंसुओं की कहानी लिखी होती है। यार, इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग खुशियों में बड़े होते हैं, कुछ लोग महरूमियों में जवान होते हैं। और मैं अगर एक बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स कि एक यतीम की जिंदगी शायद इस दर्द को लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं होगा। वो बच्चा जो बहुत छोटी उम्र में ही किसी साइज में महरूम हो जाए, वो दुनिया को दूसरों से मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। जब दूसरे बच्चे अपने वालिद का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं या अपनी माँ की गोद में सुकून तलाश कर रहे होते हैं, तो एक यतीम बच्चा खामोशी से आसमान की तरफ देखकर सोचता है कि शायद मेरी दुआएं भी किसी दिन वहां तक पहुंचे। लेसन्स, मेरी ये बात याद रखिएगा कि यतीमी सिर्फ किसी अपने को खो देने का नाम नहीं होता, बल्कि ये वो वक्त होता है, बल्कि मैं यूं अगर कहूं तो यूं बेहतर रहेगा, बल्कि ये वक्त जो है ना, सबसे बड़ा हो जाने का नाम भी है, ये अपने आंसू पोंछने का नाम भी है, ये हर तकलीफ पर खुद को तसल्ली देने का नाम भी है, ये रातों को खामोशी से जागने का नाम भी है, किसी को आवाज ना देने और फिर अगली सुबह मुस्कुराकर दुनिया के सामने आ जाने का नाम भी है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं, इंसान सिर्फ उनके साथ जीना सीख लेता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि यही यतीम बच्चा जिंदगी की ठोकरें खाते खाते, हर मुश्किल से लड़ते लड़ते, हर दर्द को अपने सीने में दफन करते करते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां लोग उसकी कामयाबी को देखते हैं, मगर उस सफर के जख्मों को नहीं देखते। लोग उसकी आवाज सुनते हैं, वो खामोशियां नहीं सुनते जिन्होंने इस आवाज को मजबूत बनाया। लोग उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, मगर वो रातें नहीं देखते जब वो सिर्फ अपने रब से बातें करता है, या जब वो अपने रब से बातें करता था। और शायद आज आपके सामने माइक्रोफोन के पीछे बैठा ये इंसान भी इसी हकीकत की एक झलक है। अगर इस आवाज में आपको एतमाद महसूस होता हो, तो इस एतमाद के पीछे बरसों की आजमाइशें भी हैं। अगर आपको इसकी बातों में एहसास मिलता है, तो इस एहसास के पीछे वो जिंदगी भी है जिसने दूसरों के दर्द को समझना सीखा। लोग किताबें पढ़कर दानिशमंद बन जाते हैं, और बाद लोग हालात पढ़कर। मेरे दोस्तों, मेरी बात याद रखिएगा कि मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी ने इंसाफ नहीं किया, क्या जिंदगी ने इंसाफ किया या नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस इंसान ने महरूमियों में जीना सीख लिया, वो दूसरों की खुशियों की कीमत भी सबसे ज्यादा जानता है। वो किसी के आंसुओं का मिजाज नहीं उड़ाता, वो किसी के दर्द को मामूली नहीं समझता, क्योंकि वो जानता है कि दिल पर लगने वाले जख्म दिखाई नहीं देते। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा लिसनर्स के, अगर आज आपके पास आपके अपने मौजूद हैं, तो उनकी कदर कीजिए। अगर आज आपके पास आपके अपने मौजूद हैं, तो उनकी कदर कीजिए। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, मेरे प्यारे सामने, अगर आज मेरी आवाज किसी ऐसे दिल तक पहुंच रही है जिसने जिंदगी में महरूमियां देखी हैं,
जिसने अपनों की जुदाई देखी है, जिसने खामोशी से आंसू पूछे हैं, जिसने रातों को जाकर अपने रब से सिर्फ ये कहा है कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, तो मैं उससे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत ना हारना। बेशक ये दुनिया बहुत जालिम है, मगर हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिन लोगों को अल्लाह आजमाता है उन लोगों को अल्लाह एक दिन ऐसा मकाम भी देता है जहां उनकी कहानी दूसरों के लिए हौसला बन जाती है। और ये भी याद रखिए कि लिसनर्स के बाज दरख्त धूप में इसलिए खड़े रहते हैं ताकि किसी और को साया दे सकें। कुछ लोग खुद में जीते हैं, खुद के दर्द में जीते हैं ताकि दूसरों को मुस्कुराना सिखा सकें, और कुछ लोग खुद तन्हाई का सफर तय करते हैं ताकि किसी को तन्हा महसूस न होने दें। शायद जिंदगी का असल हुसन भी यही है कि इंसान अपने दुख को दूसरों के लिए आसानी में बदल दे। मेरे दोस्तों, अगर आपको कभी कभी यूं फील होता हो या कभी कोई खामोश इंसान मिले, तो फौरन जो है ना, ये मत सोचिएगा या ये मत समझिएगा कि इसके पास कहने को कुछ नहीं हो सकता, वो इतना कुछ कह चुका होता है या इतना कुछ है ना वो बोल चुका होता है कि अब उसके अल्फाज भी थक चुके होते हैं। हो सकता है कि वो हर रोज अपने दिल के टुकड़े समेट कर नई सुबह का इस्तकबाल करता हो, और हो सकता है कि वो आज भी सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा हो कि एक दिन अल्लाह उसके सब्र का बेहतरीन सिला अता फरमाएगा उसे। जिंदगी ने अगर कुछ छीन लिया है तो यकीन रखिए, बावर रखिए कि अल्लाह ताला के खजाने में इससे बेहतर भी मौजूद है। इंसान का काम सिर्फ चलते रहना है, रुकना नहीं है। कभी आंखें नम हो गई हो ना, कभी आंखें नम हो गई हो, कभी दिल भारी हो गया हो, कभी रास्ता मुश्किल हो गया हो, मगर जिसके दिल में अल्लाह पर यकीन बाकी है वो कभी मुकम्मल तौर पर हारता नहीं। और अगर आज आप अपने वालिदैन के साथ बैठे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं, उनका हाथ थाम सकते हैं, उनके हाथ चूम सकते हैं, उनके लिए पानी का एक गिलास ला सकते हैं, तो आज ये सब कर लीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत या दुनिया की सबसे बड़ी बैंक बैलेंस ये नहीं है कि आपके पास ढेर सारे पैसे हों, बल्कि वालिदैन की दुआएं होती हैं, ये बहुत बड़ा बैलेंस होता है। जिन लोगों के पास ये नेमत मौजूद होती है वो वाकई दुनिया के अमीर तरीन लोग होते हैं, और जिन लोगों ने ये साया खो दिया होता है, अल्लाह ताला उनके दिलों को अपनी रहमत से भर दे, उनकी तन्हाइयों को सुकून अता फरमाए, उनके नसीब में ऐसे लोग लिखते जो रिश्ते न होते हुए भी रिश्तों से बढ़कर साथ निभाते हैं। स्वीट लेसन्स मैंने अपने भी देखे हैं, मैंने पराये भी देखे हैं। ये बहुत वसी टॉपिक है, इस टॉपिक पर भी मैं बात करूंगा फिर कभी। किसी इंसान की मुस्कुराहट देखकर ये फैसला मत कीजिएगा लिसनर्स के उसकी जिंदगी आसान है। हो सकता है कि वो वर्षों के दर्द अपने सीने में दफन करके सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहा हो कि दुनिया उसे एक टूटा हुआ ना देखे, टूटा हुआ ना समझे। और याद रखिएगा कि टूटकर भी जो इंसान दूसरों को हौसला देता है वही असल में सबसे मजबूत इंसान होता है। अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमाए, हमारे वालिदैन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़रत फरमाए, और जो आजमाइशों से गुजर रहे हैं उन्हें सब्र, हौसला और इज्जत के साथ जीने की तवक्को। मतलब देखें, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला जो है ना आपको हौसला दे, सब्र दे, आपको सब्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी से है गिला मगर फिर भी हमें जीना तो है। ख्याल रखिएगा, अल्फाज बहुत हैं, लफ्ज़ बात बहुत ज्यादा हैं, अल्फाज टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सच्ची बातें बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, अल्फाज अपना वजूद खो देते हैं।
इंसान लफ्जों को जोड़ता है, जोड़ते जोड़ते थक जाता है। फिर कभी मुलाकात होगी जी, दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हमेशा शामिल रहेंगे। प्रोग्राम के बाद अपना फीडबैक कर सकते हैं। जहां रहिए, जिधर रहिए, खुश रहिए। तल्दी पाकिस्तान, यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। तल्ला पामान एंड लव यू ऑल।